मनमुख गणत गणामणी करता करे सो होए ताकी कीमत ना पवे जे लोटे सब कोए गुरमत होए

खेल गए से पंखनों जो चुंगन दे सिर तल घड़ी के मोहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिले सो मिले।

जिस तू मिले सो मिले जाए सच्चा पिड़ मल बिन गुर प्रीत ना उपजे बिन गुर प्रीत ना उपजे।

हे बिनंती सुन प्रभ मेरे, देहे नाम कर अपने चेरे। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं, जप जप जीवा सतगुरु नाम। सुख टल गुर सेवियन सहज सुभाए, दर्शन

0: आप अपनी बुधया जेती बन पिन पिन तो है तेती।
1: तुमरा लखा न जाए पसारा कै विद सजा प्रथम संसारा।
0: एक रूप रूप स्वरूपा रंग पे हो राव की पूपा।
1: अंडर जेरज से तजकीनी उत्पज खान बहु राज दीनी।
0: कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट पे हो संकर केठा।
1: सगरी शिष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप सजंभव।
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो।
1: जिते उठव तोत पाता सकल मलेश करो रण काता।
0: जे अस्तुर तव सरणी पर तनके दुष्ट दुख्त हुए मरे।
1: पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।
0: जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नहीं आए है।
1: रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला।
0: कृपा दृष्ट तन जाय न हरे हो ताके ताप तनक मोह हरे हो।
1: रेद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सके ना कोई।
0: एक बार जिन तुम्हें सुबह

0: करके
1: कृपा कलवेह कटे ज्ञान अंजन सारिया।
0: अंदरो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया।
1: कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया।
0: बाबा जिस तू देहे सोही जन पावे पावे ता सो जन देहे जिसनु होर क्या करे विचारिया।
1: एक परम पूले फिरे दे जिस एक नाम लाग सवारिया।
0: गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिन्ना भाणा पावे।
1: कहे नानक जिसे प्यारे सोई जन पावे।
0: आ वो संत प्यारे हो अकत की करे कहानी।
1: करे कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईए।
0: तन मन धन सब सौंप गुरु का हुक्म मन्ने पाईए।
1: हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी।
0: कहे नानक सुनो संतो कथियो अकथ कहानी।
1: ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया।
0: चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे आ।
1: ए माया मोनी जिनेत परम पलाया।
0: माया ता मोनी तिने कीती जिंठ गौली पाईया।
1: कुर्बान कीता तिसे बिटो जिन मोह मीठा लाया।
0: कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया।
1: ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले।
0: एहो कटंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले।
1: साह तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई।
0: ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछताई है।
1: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले।
0: कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले।
1: अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया।

0: कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया।
1: सुर नार मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया,
0: पाया अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन वसाया।
1: जी जंत सब तुद पाए एक वेख परसन आया,
0: जाप लो अहंकार चुका सतगुरु पला पाया।
1: कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर निपाया।
0: भगता की चाल नराली चाला नराली भगता केरी बिखम मार चलना।
1: लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना।
0: हनियो दिखी वालो निकी एत मार्ग जाना।
1: गुर प्रसादी जिने आप तज्या हर वासना समाणी।
0: कहे नानक चाल भगतां जुगो जुग नराली।
1: ज्यों तू चलाहे तिवे चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे।
0: जिव तू चलाहे तिवे चले जिन्ना मार्ग पावे।
1: कर कृपा जिन नाम लए से हर हर सदा त्यावहे।
0: कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
1: कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे तिवे चलावे।
0: एओ सोइला शब्द सुहावा शब्दो सहावा सदा सोइला सतगुरु सुनाया।
1: एह तिन के मन वसिया जिन तुरु लिखिया आया।
0: एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली किने ना पाया।
1: कहे नानक शब्द सोहिला सत गुरु सुनाया।
0: पित होए सेजना जिनी हर त्याया।
1: हर त्याया पित होए गुरमुख जिनी त्याया।
0: पवित माता पिता कुटुंब सहत सियो पवित संगत सवाया।
1: कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया।
0: कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया।
1: कर्मी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा न जाए।
0: ना जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए।
1: सहसे जियो मलीन है कित संजम तूता जाए।
0: मन तो वो शब्द लागो हर सियो रहो चित लाए।
1: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा इव जाए।
0: जियो मैले बारो निर्मल जियो त मैले तिनी जन्म जुए हारिया।
1: ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया।
0: वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यो बैतालिया।
1: कहे नानक जिन सत तज्जिया कूड़े लागे तिनी जन्म जो हारिया।
0: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी।
1: कूड़ की सोय पहुंचे नाही मनसा सच समाणी।
0: जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले से बन जारे।
1: कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले।
0: सिख गुरु से ती सन्मुख होवे होवे ता सन्मुख से कोई जियो रहे गुरु नाले।
1: गुर कै चरण हृदय त्याहे अंतर आत्मा संभाले।
0: आप छड़ सदा रहे परने गुर बिन अवर न जाने कोई।
1: कहे नानक सुनो संत हो सो सिख सन्मुख होए।
0: जेको गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे।
1: पावे मुक्त न होर थे कोई पुशोभ बेकिया जाए।
0: अनेक जूनी परमावे बिन सत गुर मुक्त न पाए।
1: फिर मुक्त पाए लाग चरणी सत गुरु शब्द सुनाए।
0: कहे नानक विचार देखो बिन सत गुर मुक्त न पाए।
1: आप हो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी।
0: बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी सिर बाणी।
1: जिन को नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी।
0: पीवो अमृत सदा रो हर रंग जपियो सारंग पाणी।
1: कहे नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी।
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी।
1: कही दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख बखानी।
0: हर हर नित करे रसना कहा कछु ना जानी।
1: चित जिन का हिर लिया माया बोलन पैर वाणी।
0: कहे नानक सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी।
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ।
0: शब्द रतन

0: कर्म कमाया तो दसरी राजा तू जग में आया।
1: जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया,
0: प्रसादी हर मन बसिया पूरब लिखिया पाया।
1: कहे नानक ए शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु स्याओ चितलाया।
0: ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं ज्योतरी हर बिन अवर न देखो कोई,
1: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया।
0: यो विश संसार तुम देख दे हो हर का रूप है हर रूप नदरी आया।
1: गुर प्रसादी पूजिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई।
0: कहे नानक के नेत्रांद से सतगुर मिलिया देव दृष्ट होई।
1: ए श्रवणो मेरे ओ साचे सुनने नो पठाए,
0: साचे सुनने नो पठाए श्री लाए सुनो सत बाणी।
1: जत सुन

जेता सुमंद सागर नीर भरिया ते अवगुण हमारी दया करहु किस मेहर पावो डुबदे पत्थर तारी जी अड़ागन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकुम बिछाणै सुख होवै दिन राती प्रणवत नानक हुकुम पछाणै सुख होवै।

0: ऋत रजते का जुर्ग्रत हुआ द्वापर अतपे का सतग्रत हुआ कालजुग रथ गण का गुड़ ग्रत हुआ महला बेला
1: श्याम कह स्तंभ स्वामी सच में आसे सच

0: महला पहला गौ ब्राह्मण को करना गुबर तरना जाय धोते टिका तेजा माली धन मिले शंखा अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका बाय छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री वगैन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद।

जागै प्रभु कै सिमरन भावना व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसे दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ शिनानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी प्रभु कै सिमरन होए सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला से सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाई प्रभु कै सिमरन सब ते उचा प्रभु कै सिमरन उदरै मूचा प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन सबकी सूझै प्रभु कै सिमरन नाहि जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिदमाए समाए प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरै से तनवंते प्रभु को सिमरै से पतवंते प्रभु को सिमरै से जन प्रवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे प्रभु को सिमरै से सर्प के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जने आप दे अल्लाह नानक जन की मंगैर वाला प्रभु को सिमरै से परे उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सत बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन मन रीता प्रभु को सिमरै तिन अनंत कनेरी प्रभु को सिमरै बसे अरनेरी संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन कबूना झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन निश्चले आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन कांत न पार सिमरे से जन जिन को प्रमया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीचों कुंड जाते हर सिमरन तारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल कारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा करके

अब सात जना की ये चर्ज कथा अष्टपदी साधक संग मुख जलो साधक संग साध संग सगली मलखोत साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान साधक संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सबोतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधकी महिमा बरने कौन प्राणी नानक साधक शोभा ब्रह्माए सुमानी साधक संग गोचर मिलया साधक संग सदा प्रफुलाय साधक संग आवै बस पंचा साध संग अमृतरस पुंचा साध संग होय सब की रेण साधक संग मनोहर बैन साधक संग नगत हूं तावै साध संग अस्तित मन पावै साधक संग माया तिपिन साध संग नानक सुप्रभ साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु के संग मा प्रीत साध संग किस ने बैर साधक संग न की बिग पैर साधक संग नाई को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नाई ताप साधक संग तरे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कदू तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्त को चरलै साधु के संग जरसै साधु के संग बसे थान उच्चे साधु के संग मैल पहुंचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उधार है साध संग साज निमित कुठम निस्तार है साधु के संग सुतन पावै जिस स्थान ते सबको बरसावै साध संग धर्म

हुए बैबल राजा कहूँ बेकार नीच का साजा कहूँ आप कीर्त मयावे कहूँ भला भला कहावे जो प्रभु राखे तिवि रह गुरु प्रसाद नानक सच कह कबू हो पंडित गिरे बखयान कबू मोन तारी डावे त्यान कबू तारते रसिनान कबू से साध मुख गया कबू कीट हस्तंग हो जियान कजोन परमे परमैया ना नारू जो संग दिखावे चों प्रभु पावे ते उन चावे ज्योतिष भावै सोई होए नानक दूजा अवरण कोय कबू सात संगत पावे सस्थान दौर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रकाश सुस्थान कर नहीं विनाश मन तन नाम हृदय करांग सदा वसे पार मुके संग जो जल मैं जलिया खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कह सद गुरबान सलोक सुखी बसे मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अंकारिया नानक गर्भ गले अश्वरी जिसके अंतराज मान सो नरक पातियो सो अंजो जाने मैं जो बनवान सो तविस्ता का जनते आप सको करमंत कहावे जन्म मरे भोजन फरमावे तन भूमका जो करे कुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकिया मुक्ता के सुख पावे धन मंता हो क्या को गर्भ जहाँ सब कुछ जिसका दिया दर्भ असुरा जे को कहावे प्रभु की कला धन मंता हो कर करबावे तिन समान को संग न जावे मन बा बलस कर्मण को प्रक्रियास बल पितरता का बिना सब ते आप जाने बलवंत खिन मै हो जाए पसमंत किसे न बदे आप हंकारी धर्म राय ते करे खुआरी गुरु प्रसाद जा का मिटे महान सो जन नानक दर गई प्रवान कोट कर्म करे उतारे श्रम पावे सगले बिरथारे तपस्या करे अंकार नरक सुरु फिर फिरे अवतार अनुक जतन करे तुम इंद्रवे हर दर गये कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निभावे सर्व क्रियंजा कमन होए कहो नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कस होए तब उसको सुखना

जब लंग वो मन संग माए तब लंग तनमरा देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटीला कुड़ता वै त्रिवत ने आवे माया पाछे पावे अनक भोग विख्या की करे न त्रिवता वे खब कमरा बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ विरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके याद काम विचार जैसे दिश के जैसा हो आपे आप आप रस होए जो कुछ किनो सो अपने रंगे सब ते दूर सब हूं के सांगे बुझे देखे कर विवेक आपे क्यापे अनेक मरण बिन से आवण जाय नानक सदी रह समाए आप बुझे से समझे आप आपे रचे सबके साथ आप किनो अपन विस्तार सब कछु कहो करने हार उसते भिन्न कहो कुछ होए थान तन तरे का सोए अपने चलता करने हार कौते करे दंगे पार मन में अपना अपने माए नानी कीमत कह न जाए सत सत सत पर स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्या सच सच सत सब कीना कोट मधे गिण मिलड़े जीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपारण निर्मल निर्मल निर्मल निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण वख्याल पुत्र पुत्र पुत्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत

लोक जी जंत के ठाकुराय आपे वर्तन हारे नानके को बसरिया दूजा कै दृष्टार सुबदी आप कथे आप सुन हाल आपे का विस्तार जात इस भगत श्रेष्ठ उपाय अपने भाने लै समाए तुम ते भिन्न नहीं कुछ होए आप उत सत जगत परोए जा को प्रभु जी आप बुझाए सतनाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब ताके दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखै तिस को न मारे सो मुआ सुमन बसार तिस तवर कहा को जाए सब सुरेख निरंजन राय जी की जुग जाके सब हाथ अंतर बार जानु सात गुणिधान बेअंत पार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूरे दयाल सब उपरोह कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रिया परत पाले जीवन भोपा जो जो रचो सुत से त्यात जिस भावे तिले मिलाए भगत ग्रह हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करण हर नानक जानिया जन लागा हरे के नाए तिसकी आसन बिरथी आए सेवको सेवा अपने आए हुकम भूज परम पद पाए इस ते परणी विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पय निर्वैर अंधन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर पवे मेले सात संग मिल करो आनंद गुण गाव पर परमानंद राम नाम तत्करो विचार दृढ़ उदय का क्रोधार अमृत वचन हर के गुण गाव प्राण तरण कह सुहा आठ पैर पर पेखो नेरा मिटे ज्ञान बिनसे अंधेरा सुन पदे सिर दे वसाओ मन छे नानक फल पाओ हल पल दुल सुवा राम नमन त्रोतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसि साज ब्रिखे मन तन नाम जबोले बुलाए दुख दर्द मन ते हो जाए सचो पार करो अपारी दर कहने फेंके तुम्हारी एक टेक रखो मन माए नानक बौर न आवे जाए तिस्ते दूर कां को जाए गुरु राखणार त्याय निर्भोज पै सकल भव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे जिस पर राखे तिह नाए दुख नाम जब मन हो असुख चिंता जाय मिटे अंकार तिह जन को कोई न पहुँचन हार सिरू पर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी जाकी दृष्ट दर्शन पेख दुर श्रेष्ठ मत पूरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पेख दु दृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर धन सेवा सेव पुराण अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सोध निहाल ताके निपन आवत काल अमर भय अमरा पद पाए आ साध संग नानक हर त्याए आलोक ज्ञानी अंजन गुरदिया ज्ञान अधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपति संत संगंत्र प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक कसकट मायन ग्रंग नान दिस्ताए नौन दमृत प्रभु का नाम देहि महस का विश्राम सुन समाध न तैनात कह न जय चर विस्माद तिन देखे से आप दिखाए नानक तिजन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर आनंद घट घट पिया भरया भगवान धरण माया आकाश पिया सरलोक पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पारम जैसी अग है तैसा करम पौन पानी बस अंतर माए चार कुंडा दिस माए तिस्ते पिन कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुखाओ वेद प्राण समृत मैं देख सिर सुरन कतर माए एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई गुणे मोल सर्व ज्योत में जाकी जो तारो स्वामी उत्पाद गुरु प्रसाद ब्रह्म का नास नानक तिन में विश्वास संजना का पेखन सा ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संत जना सुने सो वचन सर्व व्यापी राम संग्रचने जिन जाता तिसके रहत सत वचन साधु सब कैद जो जो होए सो इस कुमाने करण करावन हर प्रभु जाने अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन दे समोए आप सत किया सब साते तिस प्रभु दे सगले उत्पाते तिस भावता करे विस्तार तिस भावता एक अंकार अनकला लख न जाए जिस भाव तिले मिलाए कौन कौन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतर का जिसे आप जनाए नानक तिजने आप हो जाए सर्वभूत आवरतारा सर्वनारायण अपेखन हार सगल समग्री जा का तन जा पंजस आप ही सुनाम जाने खेल बनाया गया कारी की नीम आए सबके मत अलिपतो रहे जो कुछ कहना स्वापे कहे आगे आवे आगे जाए नानक जा भावता ले समाए इसते हुए सुना ही बुरा और कहो अपने कुछ करा भला कर तुदा नहीं किया आपे जाने अपने जी आप साज धारी सब साच ओत पोत्या पर संग राज ताकि कदम कही न जाए दूसरो तसो जी पाए
ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕੇ ਜਾਨ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇਆ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਭਰਾ ਸੋਏ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਏ ਜਣੇ ਆਵਣ ਕਹਿ ਸੋ ਆਵ ਜਣ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾ ਆ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਣ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲੋਕ।

खड़ग केत में शरण तिहारी आप हसदै लेहो उबारी सर्व ठौर मो दुष्ट दोख ते।

नित तलाए राम सदा हो सुहागणी हर जियो मरह न जाए राम हर जियो मरह न जाए गुर के सह सवाए सातन कंत प्यारी सा संजम सदा है निर्मल गुर के शब्द सिगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन आपे आप पाया नानक सदा बिर लावे आपना जिन गुर चरनी चित लाया फिर पायड़ा बालड़िए आंदन सहदे माती राम

सहज आनंद हुआ बड़भागी, मन हर हर मीठा लाया। जन कह नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया। सहज आनंद

बडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर बेचोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर बेचोली।

सावन जब पहले सब सृष्ट उपाई तब ही मानुख देह बनाई तन इसके सिर केस जो दीनो सो ए तन शिंगारे कीनो दाड़ा मूछ सिर के

नरसे नार होए अवतरे शिव शिव करते जो नर ध्यावे बर्द चने डौरू टमकावे भजे देव कोई और महामाई की पूजा करे नर से नार होए अवतरे तू कैयत ही आद पानी मुक्त की बरिया

बिन रह रास समा जो खोवे, कीर्तन पड़े बिना जो सोवे, चुगली कर जो काज बिगारे, त्रिग तिस जन्म।

डुलावै हर जस सुनते बात चुलावै निरतन देख ना पास बहावै सोतन खाई मूल कहावै कथा कीर्तन में मन नहलावै संत

सगल जगत अपने सुख लागे ओ, दुख में संग ना होई। एह जग मीत ना देखियो कोई, एह जग मीत ना देखियो कोई।

साधो रचना राम बनाई। एक बिनसै एक अस्थिर मन है अचरज लख्यो न जाई। सोरठ महला नौवा अज हूं समझ कछ बिगड़ो नाहन। भज ले नाम मुरार धन गुरु तेग बहादुर साहिब जियो। भज ले।

बिन सजै है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है, तैसे जात आज है, राम सिमर राम।